0: प्राकृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Studio FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दूध को नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: का सब को सरोकार आज का बाल बालिका भोलि का सदनहार
1: बाल बालिका मधि होने कने दुर्व्यवहार कानून ने दंडनीय मिले तसर्थ कसले बाल बालिका दुर्व्यवहार न करो उन्हीं को अधिकार सुनिश्चित कर तर्फवाट सहयोग करो अनिवार्य रूप में विद्यालय पठाओ र बाल मनोभावना बुझे शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप में सहभागी कराओ
0: कहीं कत बाल बालिका मधि दुर्व्यवहार देखिमा सहयोग न बसाऊ संबंधित निकाय में उजुरी करो बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सब को जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय हो बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सब को जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय दू
1: अस्ट्रेलियन एज अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउंडेशन को सहयोग में रूप नेपाल द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: 週ニュースメイトをご参考にしてください。
1: そして彼らへのジャナヒッマザーリサンデーズ
2: ポッシャリユクタカネコラジバンカランガハルプラマンマタケタンマ
1: スワスティジバンコアダーホーサントリトロポシュニタアハルビシスカリガルボティマイラスキリアマーラパスボシュミニカバルバリカハルライポシュニタカナコビシスアブシタポッドチャダイニカナマダルバーハリオタカリフォルフォルドタタアニポシュニタカニコラシュマベスカランजन्मेको एक घण्टा भित्र शिशुलाई स्तनपान गराऊ, छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाऊ, छ महिनापछि स्तनपान सँगै उमेर अनुसारको पूरक खानेकुराहरू सुरु गराऊ, आइरन भिटामिन ए र जिंकयुक्त खानेकुरा नियमित सेवन गराऊ, जंक फूड धेरै नुन र अस्वस्थकर खानाबाट टाढा रहऊ। कुपोषणले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर पोषणयुक्त समाजको निर्माण गरौं। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

0: నాగరిక సాహిత్య కక్ష సంచాలన మహోత్సవం విశ్వసన అదనీతుగా గ్రహి మహానుభావులు యాతత్ వ్యవస్థ కరణీబాట ప్రభావం సేవా ప్రాప్తికు సహజీకరణకు లాగి నాగరిక సాహిత్య కక్ష సంచాలన కొరియకు ఉక్త కక్షబాట ముఖ్యకు సేవలు ప్రాప్త సక్రమేశ సేవా ప్రాప్తికు లాగి నాగరిక సాహిత్య కక్షగా సంపర్క రాఖ్న అనురోధ గరించ సేవా ప్రాప్తిమా కసీకు ప్రలోభన నగరి ఆఫ్నో సేవా లిన హార్దిక అపిల్ గర్దా సేవా ప్రాప్తిమా కునే గ్రాసు ఆయన గ్రాసు సునే అధికార కార్యాలయ ప్రముఖ సభా సూజీ సంపర్క రాఖ్న సక్రమేశ
1: కోస్టి ప్రదేశ సరకార ఆంతరిక మామలా తథా కానూన మంత్రాలయ విరాట్నగర యోని హింసాబాట బచౌ ర బచౌ యంసన్ని హింసా సామాజిక అపరాధ హో బాలబాలికా యంసన్ని హింసాకు జోఖిమా హున సక్షన్ హింసా సిమికి ఆఫంత సాథీ భై పరిచిత నాతేదార ర జోసుకి బాట హున సక్ష అభిభావకులు ఆఫ్నా సురాసురీకు వ్యవహార ఖ్యాల రాఖౌ బాలబాలికాకు చాలచలన బానీ బ్యవహారా అస్వాభావిక పరివర్తన ఆయకు హున సక్ష తీస్తు పాయే ఉనిహరుసంగ తత్కాల కురా గరౌ బాలబాలికాసంగ నియమిత సంపాద గర్ని గరౌ
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौ जीवन रक्षा गरौ
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दियो सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौ सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौ सड़कको नाली ठल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिऊ सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भार प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्ने गरौं सड़कको तत्काल मर्मतमार गर्ने गरौं यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: सवारी साधनको इन्जिन र चेसिस रूपकरण सम्बन्धी सूचना
3: आदरणीय सेवा ग्राही महानुभावहरू तपाईँले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ
0: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर बालबालिकालाई लागु औषध दुरूपयोगबाट बचाउ
3: लागु औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बालबालिकालाई लागु औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं बालबालिकाको संगतमा ध्यान दिउ लागु औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिउ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश
0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौं जीवन रक्षा गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: पर प्रिंट मुजुकर को रकम रवारी साधन को नंबर एक सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपाईले आफ्नो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउनु पर्ने सवारी कर नवीकरण दस्तुर लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिंट माग्न बैंक भोक्सर गर्न अघि सवारी कर तथा दस्तुर एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिलमा आफूले बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय किराँती गयो।
3: स्थानीय तहमा दर्ता भएका यी विस्ताको दर्ता प्रतिनिधि तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका यी रिक्सा पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्दा यदि कार्यालयले जारी गरेको सकल बिलबुक भएमा सोको आधारमा स्थानीय तहबाट सुरुवा फिर्ता गरेको निष्ठा समेत राखी सोही दर्ता नम्बर कायम हुने गरी अघि खड़ा गरिनेछ। यदि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको सकल बिलबुक नभएको तर स्थानीय तहले जारी गरेको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलबुकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको सवारी दर्ता नम्बर समेत उल्लेख भएको खण्डमा स्थानीय तहले जारी गरेको सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र राखी प्राधिकको नम्बर कायम गरी बिलबुकको प्रतिलिपि दिनेछ। त्यसै गरी यदि यातायात कार्यालयले दिएको जाँच पास प्रमाणपत्रको सकल करीमा पनि सोही सकल पत्रको आधारमा यातायात कार्यालयले जारी गरेको दर्ता नम्बर कायम गरी सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। सोझै स्थानीय तहमा दर्ता भएका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका यी रिक्साहरूको सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तहमा जेएनजीको आन्दोलनको क्रममा जली नष्ट भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा दर्ता भएका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाणको आधारमा सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलबुक समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवाग्राहीले नागरिकताको फोटोकपी दुई प्रति हालसालै खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी सवारी साधनको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर देखिने गरीको फोटो सवारी साधनको पूर्ण भाग देखिने गरीको फोटो संलग्न राख्नु पर्नेछ। यदि स्थानीय तहमा सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षकमा थप कर लाग्ने छैन।

0: check. Sorry, I found it's studio time.
1: It's 2 PM. News report 2 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध कुंड नगर पालिका

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio time. Studio time.
2: टाइम
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका पांच सौ कुम्बू

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल
2: कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: सूचना स्टेट स्कूल नेपाल को सेकेंड होम प्रोग्राम को नजीक एकजना महिला कर्मचारी औषधिक भेषा दरखास्त आह्वान कर शिक्षित तथा योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का DOBSNEPL.com में प्रकाशित सूचना अनुरोध कर
1: दरखास्त दिने अंतिम मिति यही भदौ 15 गति अर्थात अगस्त।

0: प्रोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोची संपर्क राख्न सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: त्रिभुवन एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सुनिए स्टूडियो 10।

लसो योग्याले नाना लदुगु तिनी यंग चुरंग जम्मू निंद्रे चिबमुला तुरी लानं आज्याबा तामगादिसे प्लिंगमुला चु जम्मू लिंग्री यंगशी श्यमरी संदुष्ट लसी चिखंबा आरे तिनी चुरंग जम्मू लिंग्री ज्याबल लसी चिबारी यंगदा सांदी यंगबारी ज्याबल लसी चोबारी श्यमला संदोकला लागिरी परमेश्वर बच्चन यंगशी यंगदा लोपमुला हे बंदा नाचा यंग संजुगे बोर्गी वाई

제임스 라소 캬플라 주타문 예탕산 치슈바 점문 저주아 레나나가 아바마 미메맘 랑 점마단 예수 크리스라민니 캬플라 श्रोता चुतामन गेतांग संसी शिव जमन श्रोता दुगुदा नानन जेन मुला तेमिया नानन तांग बमुला तेदबिमा रंगिलो वांचन दातन गा खामेन बमुला उचे रंग से नंद लशिब मायर लागिरिनुन हो जुला लागिरिन नानी नानन तांग बमुला श्रोता नंद था मुला नंचे सेसे आसेना नमचे रंगीलो वंचंग यंगना तामंग भाषारी ताम पंगबा परमेश्वरल वचन बाबा चमर को लाभ मुला तरा रंगी सिंगंद साथ पिन छुबुल लागिरी लानन थोजे सिमुला उचे दापिंगंद रंगीलो पत्र देन सुजापला खाचो मुला नंद लानन विश्वास मुला की रंगी से चुगे तंग सांसी चुला जावदेन आजव तामन ब्रिसे पुई खाला बिशी श्रोता अर्गु गोर्गिक ताम जत्ती हुमुलं विशाम रंगीचे परमेश्वर वचन सनबरी समय पिन शिव मुला तर होज समय द्री रंगी ठुक्कताले शिव को कि परमेश्वर से जा रंगी तो होज समय री आशीष पिन शिवला उच्छे परमेश्वर वचन सन बंद के अंतम जा ठिकना हिन विवतम रंगी से गोशिव को विवा न नान्रो दिना तिग्र विमा यंग परमेश्वर अनुग्रह ज्ञान से देन यंगा परमेश्वर वचन यानबा जो मौका पिन बमुला उच्छे नद विश्वास मुला की जम्मन श्रोता दुगुनुन परमेश्वर वचन सन बरी तयाता शिव बमुला विषय श्रोता तिमी दापेन गए रानी लवन संग परमेश्वर ला वचन बसी खा बमुला परमेश्वर ला वचन यान बरी रानी फेपका वाला लागेरी उच्छे रानी ला होजु तीर्थना मन लवरी ने परमेश्वर ला वचन रानी ला वंचन थान्छे त मुला तिमी नै बाबु वचन विषय हिना लेर तहरी थान्गो परमेश्वर ल वचन छार कबुल यमसे याकुब ल किताब तीन अध्यायला तीन पद हिंसे आठ पद धोने यंग च्यासे त मुला छुरी चोरम लसी ब्रेग मुला यदि ता दुगुदा तहरी थान्बल लागेरी थिन्न सुंगरी लगाम कन्जी विश्वाम थे ग्रेनु सैनिन यंग से थेबा बोर्गे मन बगलारी बोरखामला चागो क्यूरी ब्रबा जहाज का देनुन कत्ते ग्रेन ग्रेन तामुला ओछे थेजा लावल तोड़ से ब्रामुला तसे मुन होजु चाला ब्लाबा मिसे सिंगला क्याबसे रंग से बोधे मन बगलारी बोरखामुला थेरं लसिन यंग लल्लेनुन लुईला जापकिक से हिन्ना तसै मुन्थे से ग्रेन ग्रेन तम लामुला लामुला च्यागो मेला जपकी फिलिंगो जिसे ग्रेन ग्रेन री क्रोसी नास लामुला थेताची यंगला लेमिन ने रंग बन हिन्ना तिग्र विमा चु यंगला लुईला जम्मन बंदन नाइवा गे लापुन बसे हिन्ना चुसे यंगला पूरन जुनी नोगनलासी नरगरी नरगल मेरी जंगमुला उच्च ठेरंगन नंगरला मेसे क्रोसी नास्तामला ठेरंगन मेसे क्रोसी नास्तामला मिसे जम्मन खाला चरा चुरंगी देन जम्मन पशु दुगदा उच्च क्यों नंगरचिवा से दुगदा जम्मदन तहारी थान खामुला उच्च तहारी थान बनुमुला तरा लेदा खाले से तहारी थान बरी खाम्बा आरे तिग्दा विषम ले पाप देन लोंबला पिसे प्लिंबा कुटी से आजीबा चंचल दुष्ट हिन्ना श्रोता यंग थाम लगी लेदा बसे थान आखंबा सुसेला से लानन निदुगुसे दुख यंगबा बेबदाम उच्छे लानन मिला याद सानन लामुला उच्छे सायद होजु नंगरी यंग पद्व मुसिम कदे समय री यंग से आपंग विषय नुन कदे तम यंग सुन कुटी सिची आखम मुला थेतसी यंग से पंग बताम से यंग रो दुगुला उच्छे रंग बंद ग्रेन दुगुला मान आला मुला उच्छे लानन सेम सुहान ला मुला चुजे रंग निदा जे आहिन ना दा जे ना आहिन तरा जम्मन निदा चुरंग बता मुला यदि यंग से द्विपद रिचाज विषम चुरंग विवा मुलगी यंग जम्मसिन नानन गलती लामला
तर जुन मिसे होशियार तसी ताम पांगना थेचा पाको मिनी तोला रंगसे रंगन तहारी थाम थामला चुरी बिवरी माई बताम जतियो अंबिमा भूल गलती जमुन मी दुगुसे लामला तर यदि खले मिसे रंगसे पांग बतामरी नंग आलनी विषम थेसे ठेला जमुन लुईदा लगामरी थाम थामला ओछे थे निज सिद्ध ताला तर रंगसे पांग बतामरी नंग आलाब मी खालम ताखाम कद समय यंगसे चू सुंगसे ज्याबताम पांगमुला विषम कद समय आज बताम नुन पांगमुला सुसुंगसे परमेश्वर ल महिमा नुन लामल विषम मी दुगुदा के नुन के मुला तर चुरी दस्पद चाज विषम चुरंग दिव मुला गी सुसुंग यंगसे मुलम नुन पिन मुला ओछे मी दुगुदा के नुन के मुला तर जुजाली नाना ना सुजा यंसे लाबरे आता बताम हिन्ना तिगदा भीमा गोर्गिन मुहान यंसे कम बदन के यवक्वी प्यार खम ओछे अंजीला दुंगी जैतुन रोला ओछे अंगुला दुंगी अंजीर रोला थेतासी कम बक्वी प्योबा मुहान यंसे खाईने के यवक्वी आप्यो यंग प्रभुला मीता बसेलामा पक्कन यंग लसुंग यंसे खोरंबा ताखम थेतासी जबतम पंचेदा वा अजबतम पंचेदा जबा रोज तिहेदा के अजबतम खरंगबा थेजा यंगला रंगला देन यारी मुला तीन लचुबचन यंग जीवनी यंगसे प्रयोग लाखम गई अच्छे चुबचन यंगसे जम्मसिन आशीष यंगई जय मसीह।

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खरङ यान्स्युबन मला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे तिनी लचु गेदाङ रंगनीदा खरङमा नम्जी तुदे चु गेदाङ यान्छी रंगनीदा तिकै खुल्दुली ताबा मुसम रंगनीला पत्रला नुन्छी आश लसिची बमुला रंगनीला सल्ला कुई खला कुई खस्युला विवाह रंगनीदा आनन्द जेन बमुला तुदे रंगनीला ताफन लदुब विषय दुगु मुला विषम रंगनीसी कुई खस्युगु विवाह मन्ना जेन बमुला रंगनीदा गन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरङ बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नम्बर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौँ नेपाल इमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 98473 35679 98473 35679
0: लसोरोदुगु तिनी चु गेदाङ यासिङनी फेसी निबन्मला दोषी खबर सुनुन दुरी रंगनी लंगे रूप तबरी खलाब विवाह बाचो लवन नई चुगम फेसिनेला लसो फ्याफुल्ला

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Surya FM. Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 में रेकर्ड गराउनु हुन वा गुनासो @oagnep.gov.np में ईमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ।

0: Sound check. Studio time. Studio time.
1: It's 9 PM. Ratko 9 baje. टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु